सीताराम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड, लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु, देन आई विल टीच यू।